अरे संखलांजी जिंग थ्रिना चेनाल गो थ्यो बान अलोवा दु छि तंग आ तुनी जी नेमसी अदों लाठे लमसी पाति यम छ तंग आयंग अमंग थुनी किन

0: ताकि केचोर निंता रिंवे में गांचो चोगवे तामा तिरिं हिं दुने चेवो दुखो येबल माचें युमल मासम से गालचनां सो
1: थांगा चिपुतां वंगुबु खाके देमसु कुल्या शानां